0: हेलो,
1: गुड
0: इवनिंग।
1: इवनिंग।
0: बोकारो से कैसे नहीं लाइक डोंट लाइक मैं मालूम ही हो या बा आई स्टिल हैव टू सी इट। I want a breakup. Hello.
1: Andrew.
0: Eh?
1: Andrew.
0: Like, a lot has been going on, so. Oh yeah, Michi, you haven't done anything to me about eh? Like, you know a lot has been going on nowadays, so mommy. Mommy.